0: फ्री हॉस्पिटल एंड अलाइड साइंसेज यूनिट पोखरा अब सभी प्रकार के उपचार सेवा संभव है।
1: सांस्कृतिक संपदा का जगह नगर हूँ। हम सभी को

0: तो पानी में तो चावल को भात खाओ रे भूख फेर न पाए हिंसो नी बुहारी
1: आज मैं बुलबुली पारे राइस मिल पाते चावल लाए तो सुन पा यहाँ तो सावित्री पीरा सावा बिटुरो पहले अभी मैं तो धन आखिरी अगाड़ी पर रहती थी हो रही थी कति मन से गा रहे थे
0: आपने मिल बाता अति अगाड़ी पूरी बात तिल तुलर सुखा कार्यक्रम का पीला उत्पादन तथा बिक्री भरी था साथ ही विभिन्न प्रकार का हामीलाई सम्झनुको साथै तेल पनि तेलै छ भोलि भोलि भरिको पनि व्यवस्था छ सन्तर्क बुलबुले पाराई राइस मिल माथि पानी पेट्रोल पम्प अगाडि रोटाइटर अर्जुन लम्सा फोन शून्य 65 4 14 2 5 र 95 5 7 1 6 9 शिक्षित भविष्य बनाउ यो चिताले मात्र होइन अब सफलताको लागि स्किप पनि सकिन्छ त्यसैले आउनुहोस् देश वा विदेश सबैतिर काम लाग्ने शिक्षित
1: Thank you.

0: इसे तो लिंग नहीं ना को के मनीता जाते आसपाले ना को इसे लिंग से तो चावला चिन्हों खास पार ना को के कुट्टा लता अच्छाना सल्ला सुजा बिहार के माने अपनी है ता ना को कथा मुनाकिंग कुराकानी जाता सो सुसे तो लिंग से के मन लेनंग लेनंग रा कानों धुतो मास्वार के बाग मो यहाँ सा समय अवधि रा दुम के ना पा कानों मास्वार के सही सम्मा से ममुचा ना को जम्मे के ढलिंग ढलिंग धन्यवाद कानों मास्वार खास के दुष्मो यहाँ सा प्राविधिक लाफा के रा मिगिनिंग हुदा आभार कर कर जातले होता जातमो ना मास्वार समय जगदीश कनक श्रेष्ठ आदिवासी जनजाति नगर परिषद शुक्ला गंडकी के धन्यवाद मास्वार प्रायोजक पी आर कल्चर एन्ड फेसन हाउस पिलिगौडा के धन्यवाद टकरीले नाको के विभिन्न जातजाति पोसाक नयाँ नौलो पहिरनको सहस बखटाङ पी आर कल्चर एन्ड फेसन हाउस पिलिगौडा के आर्मी के होकले मुतासो काटे सलिङ नाको पट्टको के हिङो बोले मौरोह लेस लेस के स्वरले नवराज थापा मगर र कुस्मिता दर्लामी मगरौ शब्द संगीतले चेतन रजाली मगरौ अर्को साता नाम श्रृंखला लाना किङ कानको पक्कै ताराले देचे नमाचबार्याक एलिना हुन्सिन कुवर मगर घाके छाना नाको भनी सेमनमुनि रेडियो ढोरबाराही काठभूमि सोम दशमलव के मेगाहर्स अन्तर्मनौ आवाज
1: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्स।

मंत्री परिषद के कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रार के कार्यालय गंडकी प्रदेश पोखरा।